0: मुन्ना कोबा की ही ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में के दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेंडना हिंग कमें ने अफन थी कंको लन्ना
1: तिको तुम हाउ दाई रंगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकांग कंको देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे

0: Mamma, badu have je.
1: Tarifla, Sonia gata buni. Mamma beche mi ke muluwa.
0: Papa, gadi jehani e.
2: Tarifla madu kobbada.
3: Sonia, debel maasha school anda.
4: तुम्ही नहीं तो कहा था कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: है। मामा
5: किस पर से भी मामा फोन एक का हाँ मादमार यार तैयार दावी थाना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैसे फोन का डोंटा
6: कोको Don't take a make a decal in Ulevene. This only Agata.
7: Ehen Gulunta Badahikurafa Dan, Emigatugava Guluntaka, Emifuratama is Kandema.
8: Emme Sida Vegamba, Tedumaguga, Sabi to Behuruma.
9: Islam Dinuke Akita, Varukata Kuruma.
8: Detunieg Hariai Bachaveri Kuruma.
9: Islam dinu ke kankama gulegotun dini ilm verina suwa kurafa

0: खबर काटी।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी वहरा जयगढ़ के खबर गढ़ प्रोग्राम मेरे एक प्रोग्राम आए कि मैं बदल को ली अलगर नाफिज अब्द रशीद मेरे एक प्रोग्राम गई मैंने मुहिम खबर तो के सुरखी तो गई रेगा विलिमाल मस्जिद सलाम मिहार हरी बिम का बिना कुरा जमानी आम बिस्कित के बिंगा आड़ पैदे वुंग अन्ना हर सकाफी अदायरा कुम पॉलिटेक्निक का कोस तक फिशमत हम जी फवाकमा फंडा सकाफत तरीके आप है वजीर विदाड़ वुंग रस्माल मशहू कुरिया गिंदी उमन राज्य कम फत दायरा तक मिहुम बिना को इंसानी वसील तरगी कुर्म फुर्सत लिपिगेंदानेक मंग ईगल हिल्स के चेयरमैन विदाड़वुंग ईरान के यूरेनियम मुस्तंदी कुर्म के मसे के हुटानुलाने कमशा मिहादर मुस्तंदी को फावा यूरेनियम के एविस मिवरे बेरु के एविस फरात का हवाल नुकुराने कमा ईरान के हक ते आपे है इदारा के वेरिया विदाड़वुंग अधिवेस इतर खबर ते फाह कोलवे विलिमाले मस्जिद सलाम मिहार होरीबी मुगा बिना कुरा जमानी आ मिस्कित के बिंगाल वादे वैफी मेक मटका विलिमाले के बेवे खास रस्मियाति का मिस्कित के बिंगाल वादे वी इस्लामी कद तका औकाफा बेहे वजीर डॉक्टर मोहम्मद रहीम अली सईद फिय फाउंडेशन बिना कुरा में मिस्कित की मी एंगहास मी हुन्ना नमाद कुरवे गुतं इमारे कुरा मिस्किते मी मिस्कि बेगेंदानी विलिमाले गाला जागतर मस मिस्कित का जमानी फेमर बिना कुरमंग हम जे फवा में मिस्कित की देपुई के मिस्किते मिस्किद का नमाद कुरा बे के तिरु दे क्लास रूम इमाम रूम हिवने अन्नाहर सकाफी अदायरा कुम पॉलिटेक्निक का कोर्स तक फिशमंग हम जे फावा कमा फन्ना सकाफत तरीके आप है वजीर हीना वालिद विदार वेजे वजीर में विदार वे मोरिस पॉलिटेक्निक के मिया हरगद सुनियम के हफला शरफ इरको देवा वाह फुलद कम तफसील की निस्तेनी साइहा मोहम्मद
2: फन्ना सगाफता तरीके अभे वजीर हीना वलीद विदाड़वी मसक्के तरीकम के तौदीम के दायरा की कोम्बे गौमक विस मुहिम कम बोडु दायरा कम अदि दुनिया के की कंकोलतोगा मसक्के तरीकम के तौदीमा तमरीना की हमैकनी तौदीम दिनुमगा ओन्न इहतियारी गोते नूंका मिहारु गबूल कुरे फावा कम मी जमानी तौदीमी निजामे गैकुलेवे कोम्मे हम बेनुन तेरी बैकम बदायगने फावा कमशा जर्मन स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया दि डेनमार्क फद गाम तकुं तौदीमा मसक्कदुगे माहौल गुळवादे वरुगद निजाम तके गायम को फावा कम वजीर विदाड़वे सिंगापुर फद कुदि गाम तकुं बसवणी ए गाम गे तरग्गी अटका अमली तमरिना सिनायतो गे बैरुं हिमेने हे मि दायरे बोडु इन्वेस्टमेंट तके को फावा कम फाह कुरवा वजीर विदाड़वे बेन लगवामी दिरासात कुं दक्का गोतुगा मसक्कदुगे बाजार बेनुंबा फन्नी हुनरत तरगी को वजीफा के मैदान मी हूं नेरुम मसक्के तरीकम के तौदी मुहिम दौरी अदाकुर मुंदाकम वजीर विदाड़वी मी हर हस्ते कणुवधि दरीवरु के दसवे नुम फाह कुरर मी मिधि अहरु के हतरस्ते के सालिस ए दरीवरु न अला बदारु फाह कोल्दवे बोडु कुरियरु मेकम मी देह को दिनी राज्य ग मसक्के तरीकम के तौदी मुहे शौगवरी कंग इतुरुम दाकंग कम वस विदाड़वी वजीर हुना विदाड़वी हुनरुते की हमैकन इक्सोदन हकत दिनु हणिकोफावा एच नुंकमशा बैंग हुनरता की अंबिल लवंत कमा गुड़िफावा कंगं कमा एगोतों सगाफी अदायरा कुं गौमी फेमवरु गे मिंगड़ता एकलुवालुमा हुनर देनगतुम गे मसेके ता मिहारु गागंड का निवी फावा कमा मी गे तेरें गहना हेदुम गे फंडी हुनर देनगतुम गे इम्तिहान ता कामयाब कमा कुनी मालुमा की फाहकोलन जे मसेके ते कमा विस वजीर विदाड़वी वजीर हिना विदाड़वी मसेके तरकम गे दायरा तो गे फेमवरु कंडाला मिंगड़ता एकलुवालुमा हुनर तरगी कुरमा फेमवर बेलुमा मसकत गे हुनर देनगतमा इम्तिहान तबेम गे तुनु सनदु दिनुम गे गावमी निजाम गा एमएनएसडीए इन अदा कुरनी वर मुहिम दौरे कमा एगो तुंग अन्नहर फिश महमजीफा वा मिदायरा कोस्ता फार्मा कुरम गा इफरात कुम बायरे वा कमशा मि कोस्तो गे सबन सगाफी दायरा इन इतुरु फन्नानु उफेदिगिन औमकी मि दायरा लिबिगिन दाने वर बडु कुरियर मेकमा वजीर विदाड़वे अदि रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज वेरकम हवा दे वडागन नंबर 4 मि सरकार रुंगे दवणी तौदी मि निजाम हरदना को वरगदु को मी गे एम एदेवे नतीजा गावम होदवे देउमा मसेके कुरम कम वजीर विदाळवे एगोतुं गावमे तरगीवणी एगोमे गे मसेके तिरकम गे फन्ना इंसानी वसीलता फन्नी सिकुडिता के तरगी कुरेविगिन कमशा सरकार गे मे मुहिम मामाजकी दिवेहिन अदा कुरेवे वजीफा तक दिवेहिन तमरीन को ए फुरसत दिवेहिन होदे दिनु मकमविस वजीर हीना विदाळवे
1: ग्रेटर माल सरहद के मगुदौगा कवादा खिलाफ बार दुवेली के दुवा उलद त दिनकने फियवल इलमटका दिवेही फुलुहुंगे खिदमतु हास ऑपरेशन ए फशाफी मी ऑपरेशन मैगड गुतिका कुरिया गेंदनी

0: हांगहार अंगार दो में दो कोरी एकार गट फन रहे रिपीट एरे दिया गट तेरी हो आदि बुद्ध दो होगे रे में दमो पार गट तेरी हो हांगहार
1: हम एक अन्य दिवे ही राज्य क्या डूं
0: कानूना कवयतों को मिनिमम कमा असासे हक्कों दर रखा तेरे को दनी क्या मिल बरका
1: कानूना गवायतों को राय तुमके सलामता रखा तेरे कम कशवर को दनी की ही ने
0: कानूना गवायतों का फुरमे तेरे को गीतन जहनी की बे
2: कानून तक गवायतों का अहुल वेरवे हेलुं तेरे वो मकी कोमे फारुदे गिवस अमिल रखा तेरे कमशा मुल मुज्तमाओ के हम जहुमा नुहान बेरु तेरे कमे
1: कानूना गवायतों का गुले गोतुं थियाबे फुरम बेरु वासुवाल तक जवाब के नस्तिलमा दिवी राज्य गाडुं के नस्तनी
0: तरह
1: कोमे होनी हिरु दोहे गरे गांडो नुए जहायरु स्टूडियो इन वगुतु
0: एंहा 741 नुए किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
1: हमे कनी दिवी राज्य गाडु
3: कुडकुज्जकन अनियालिबे मंजर फेन्नहिंदु लोमरानु दव्वा कमाबेहे फरातकन अवहा मसला रिपोर्ट कुरव्वा कुडकुज्जकन एहीतिरकम बेनु वेफावा मंजर फेन्नहिंदु एहीतिरकम फोर कोद्देवमा फर्स्ट जेवडानु गन्नवा कुड़ा कुदीन ने की अर्गन में के हितों के दिरों एक दिन न रखा तेरे कमा हिमायंग होता है दिन मुगा अर्गन में कुम्मे मीह के विस फर्दी जिम्मा है वे अर्गन में के जिम्मा फुरी हमायंग अदा करा मातो
4: एहारा मिहारु के फिल्म तो के हिग्गे मंजर तका लवतो के तेरी फीना लमा
5: ए बला मिहरा लतीफा कोंता का गोत्सत ती अन्ननी ए मुने
6: देवानी किहिने बा
7: दिलो फो वेचे हिंगवस वेचे उले हिंगीवे हलु गैदरो
6: मी दन्ना डेत्ता
4: आदि अघोरी नामकाय को टिकटॉक चैलेंज वेस
0: कम्मे आतिथ्य दोहे करेगा ना कार जहर स्टूडियो में वागु तू
4: स्क्रीन इंहा सतर्स्तिया का सारिस न्यू किलो हर्ट्स मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड इंतजार कर लो
0: इंहा सतर्स्तिया का सारिस न्यू किलो हर्ट्स मीडियम वेव 89 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
8: दिवेहराज्य के आडू